0: सब कुने वे आपको पर कुने वे ना को तार तारा जू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा ने वे जो हंता मृगा शीश ने वाया क्या थी है जारे देख सुध जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज सबगल समाधंग मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक लाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मंग करमंग साफो कट निश्चौ करमंग कहो नानक निहचो त्यावै विन सतगुरु वाट ना पावे पौड़ी।

मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कू अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तन रूप कनी सूतक का।

सच्चा सच सोई रहाउ, अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान जोग, तिस है अराध मना विनाश सगल रोग, राखनहार अपार राख अगन माहि, शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाई, सुख सहज आनंद कणा

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कट्टी सज्जन सच्चा पात साह सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोही है सब ना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोही है सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

सच्चरे नामे समाई सच्चे नाम समाई हर गुण गाई मिल प्रीतम सुख पाई सदा आनंद रहै दिन राती विच हौ मैं जाई जिनी पुरखी हर नाम चित लाया तिन कै हाओ लागौ पाई काया कंचन तां थीऐ जा सतगुर लई मिलाई ओ सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाई बिन सतगुर भरम भुलाणिया

रंग परंग अनेक ना जापन करते बा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर पला।

0: पावड़ी बड़ी हम बढ़ाया पार तेरा मर्तबा रंग परंगे नेक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब किस अणला सब किस तेरा बस तेरा घर भला तेरा घर आनंद बधाई तुत खद मान महत्ता तेरे अपना आप दर सर्ब कला भरपूर सह जतकता नानक दसन दास तुदे बिन बता
1: ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ।

0: रंग रंग अनेक ना जप करतबा जियो अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माण महता तेरे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तृत महत दिवस रात दोए दाए दाया खिले सगल जगत चंगी आईया बुरे आईया वाचे धर्म हादूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए।

हाथ दै मुझ उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करियहु रक्षा। राख लेहु मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह वध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पार कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह तर सबहू। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पिदा, जाको पेव न पावत बिदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दोष्ट जेते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दोष।

सर्व ठार मोह सहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहूं।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया बाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो ता गावहो हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना।

साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बेटा हो, जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुन हो संत हो, शब्द तर हो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ, तित कार अनहद वाजे आनंद सुनो, वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी, संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया।

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उदारो एह वस्त तजे नह जाए नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक।

गुरसिख हो गुरसिख है पीर पीर हो कोई। शब्द सुरत चेला गुरु परमेसर सोई। दर्शन दिष्ट ध्यान धार गुरमूरत होई। शब्द सुरत कार कीर्तन सतसंग विलोई। वाहिगुरु गुरमंत्र है जप हौ मैं खोई। आप गवाए आप है गुण गुणी परोई। फुरमान तेरा सिरै ऊपर फिर ना करत विचार। तुही दरिया तुही करिया तुझै ते निस्तार। बंदे बंदगी एक तियार साहेब रोस तरो के प्यार। नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जाई है नार। कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। हों आया दूर हों चल कै मैं तकी तो सरनाए जियो। मैं आसा रखी चित मैं मेरा सब दुख गवाए जियो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले। रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सरनाई। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपना। तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय। होवा सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह। तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते सा हो सिर साहा दैसा। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा। सज्जन सच्चा पाते सा हो सिर साहा दै। जिस पास बैठिया सोही है
ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਹੋ। ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਰਠ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੁ

सुत दारा पह आन लुटाव बहु प्रपंच कार पर धन लियाव सुत दारा पह आन लुटाव मन मेरे भूले

पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीर्त की

राखन कौ सम्रत। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा।

अहनिश सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदि नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सबना दा विसाहो सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सबना दा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलो

कारज आप सवार सो प्रभ सदा सभाल पीड़ा मोक लाई कीतियाना सब रखे कुटुंब नाल कारज आप सब

सो ऐसा दातार मनहो ना विसरे कड़ी न मोहत चसा तिस बिन ना सरे अंतर बाहर संग किया को लोक करे जिस पत रखे आप सो पव जल तरे भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करे सो पूरा परधान जिसनो बल तरे जिस है जराए आप सोई अजर जरे तिस ही मिलया सच मंत्र गोर मान तर जिस जराए आप सोई अजर जरे तिस ही मिलया सच